धनगुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिन की गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जाए निडाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में राग सिंधी आसा है बसाओ भाई।

कपड़ा तो बड़ा सोहना है पर रंग पक्का होना चाहिए। इसी तरह मनुख दे रंग उस वाहिगुरु ने दिते हैं मेरे गुरु पातशाह आख देने कोई जुआ खेल।

ए जन कब हुना हारे ताल जो जाने पाशा ताल जो जाने पाशा ते जन कब हुना हारे।

पर मोहे है, देशवा पर मोहे है, सब सरमन से कब हूं न करो। देशवा पर मोहे है, सब सरमन से कब हूं न करो। न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखा अपने ही मन को लाल जहां गुटाओ चले, और सिखाओ अपने ही मन को लाल जहां।

आनको दान न लागत निको, आनको दान न लागत निको, आके भले इनी को दियो, आके भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो सभी को, मोगरे में मन दे तन दे सिरला धन है सभी के लिए को, मोगरे में मन दे तन दे सिरला धन है सभी इन्हीं को, जब्त जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, आज आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुल काम भरे, इन्हीं की कृपा फुल काम परे, इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सब विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

தன் குரு நான்கத்தை பார்க்கிறார். வேந்தரின் சுத்தி மாற்று आज हजूर फिर चले गए। सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए। ये नारद वे नदी दुख देवी नानकी को भी कई ने जाती थी। जैसे तेरा वीर वे नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता, वो तो डूबिया उतारना पशु परे मुगत को तारे पाहन पास उतारे। हजूर सचखंड पहुंच सचखंड वैसे नरम का अगे नूर ही नूर जानना ही जानना। उस जोत के अंदर जाके हजूर लीन हो गए। जो जर में जर आए खसाना ज्योति सन जो कुछ समय के बाद उस ज्योति जो सोना कांता है सदगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नानक जी तो मात लोग कल भी जीवन हर करण वास्ते वापस क्यों आते हजूर ने किया। मेरे दादा जी पहले तो सत्खंड द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते सब कुछ है जित दर लख मोहम्मदान ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्हों अपने नींद क्यों की आवाज आई इन्होंने मैं इन्होंने दुनिया भेजे जाके मेरा नाम दिखाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम इन्होंने अपना नाम जपाए अपना करती अपनिया जनानियों का नाम भी मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं हो साहबान ने हथ आदाब की वाहेगुरु फिर करो कृपा असी मातरों से जाके की दुनिया में तो उस वेले के अनुसार अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा एक नमकारी नाम महा

आन रूती आन बोइए फल न फूले ताए रे मन वत्र बीजन नाओ बोए खेती लाए मनुआ भलो समो सुआओ खोए खैड़ा भरम मन का सदगुरु सरणी पाए कर्म जिसको

इस परपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर मांग समाना। ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। चौ जुगा का निबेड़ा नर मनुखा नो एक निदाना। जत संजम तीरथ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा।

भाव भगत परवान है, होम जगते पुरब कमाई करके नीच सदावना ता प्रभु अंदर लेके पाई कल जुग

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।

रतन गर्भ में राख्या जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई तिस प्रभ को आठ पहर ध्याई रमैया रेन साध जन पावो गुरमिल अपना खसम ध्यावो जिन कीता मूड़ते भक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निध पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाई जिन दिया निथावें को थान जिन दिया निमाने को मान

रूप सुबह करके और सात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी लिख गए हो के लेखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखालो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेल।

जाना मेरे राम। नदी दे पानी नू आराम नहीं आउंदा क्योंकि दे अंदर शौ सागर दे मिलन दा तरल है, क्योंकि पानी शौ सागर तो ही विछड़िया है। हुकम विच बदलां दा रूप तार के वधिया फिर ठहरिया नहीं, एदे अंदर तड़प है, पत्थरां दियां चोटां सहारदा, जंगलां विचों लंघदा, फलां नूं चीरदा, पचा जांदा। एदा निशाना शौ सागर। इसे तरह प्यार वालियां रूहां प्यारे दे रस्ते ते तुरदी है, जरा तुरे ही नहीं है वो पहुंचेगा। तुरन वाले नू आज कदे ना कदे तो पहुंच, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म ही से, पर आज तो मन विच दर्शना दी प्यास तो प्यास बुझ जाए। मुबारक है जे अंदर प्यास लगी है तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी उस प्यार वाली रूह तू भी कुर्बान जांदे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। जुड़े है मालिक दी आराधना। सूरज ने अख खोली उठे और नदी दे कंडे कंडे तुरिया जाने, चादर दी बुकल मारी, साईं दे सिमरन ते बाणी दियां तुकां पढ़दे। अचानक ही सामने तकिया कोई इंसान है, दूरों भज के आउंदा है पर नदी दे किनारे ते आके खड़ो जा। एक वेरी दूजी वेरी भी भज के आया, तीजी वेरी जिस वेले भज के आया, ये कुछ करना चाहुंदा सी, सोने हाथ ने इसकी बां फाई ते प्यार नाल पुछे है, क्यों भाई की करन लगा है। तक कोई सुंदर मूर्ति है जिसके चेहरे ते बड़ा नूर है, अखां च मस्ती, क्योंकि अमृत वेले जागण वाला गुरु की बाणी पढ़ने वाला गुरसिख जड़ा है उसके चेहरे ते कोई अदम नहीं खेड़ा। अयाश इंसान पाप करने वाला ओदे चेहरे ते कदे भी

तो संग आ गया। कारण जी मैं करे माया तारी कर, मेरे कारोबार चल दे सन, फर्मा चल दिया सन, देशा मदेशा विच मेरा कार विहार, सारे शहर विच इतने तक मेरी कोठी के दरवाजे के दरबान हर वेले खड़ोता रहेगा। मेरा हुक्म सी कि कोई मंगता विहागत महापुरुष मेरे दरवाजे ते ना आए, जे गलती नाल आ भी जाए तो दरबार नु हुक्म सी उन्हें अगे तोड़ देना है, उन्हें देना कुछ नहीं। इसी तरह होता है। पर एक दिन कोई साईं दा प्यारा महापुरुष आ गया, उसने आके सदा की थी रब दियां दातां प्राप्त करने वाले हो, रब दे नाम ते कुछ दियो, भुख लगी है, भुख बड़ी बलवान है। फरीद ने लिखे मौतों भुख भरी, राती खा दिने फेर खड़ी, भुखा इंसान कई तरह दिया गलतियां कर जाता है, पाप कर जाता है। महापुरुष किसे प्यार चाके सदा दिती, दरबान ने कहा अगे जाओ इथो कुछ नहीं मिलेगा, पर महापुरुष हस पे कह लगे क्यों नहीं मिलेगा, जे तो इथे कुछ ना होवे तो कुछ नहीं मिलेगा, जे मेरे साई ने सब कुछ दिता है तो साई दे नां ते मंगदा कुछ दे। भगवान ने फिर उसनों कहा भाई ये ठीक है, महल है, अंदर बेअंत पदार्थ है, पर साडे सेठ का हुक्म नहीं है किसी ने कुछ देता, इस वास्ते चला जा। महापुरुष मैं नहीं जाऊंगा। महापुरुष प्यारी साध संग तू जावा एडे वसदे रस्ते घर तू खाली। दरबान ने फिर भी समझाया महापुरुष नहीं गए, आखिरकार मैं अंदरों बाहर आ गया। तकिया दरबान नु पुछया दरबान ने क्यों खड़ोता है, सेठ जी बड़ा इन किया है जानता नहीं, चला जा। महापुरुष हंसता कह लगे नहीं जा सकता, कुछ लैके मैनू क्रोध है। साहबान श्री सुखमनी साहब जी भी अंदर आप रोज पढ़ दे गुण गावत तेरी उत्तर सुमैल, जो जो साहब दे गुण गावगे त्यो त्यो मन निम्रता चाहेगा। मन दिन गरीबी गरीबी का कह नहीं मतलब है मैले कपड़े पाने या निर्भर होना, इनू तो दलिद्र के गरीबी का मतलब है निम्रता। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानक इहां मुकत आके सुख पावे। गुण गावत तेरी उतरस मैल बिरस जाए हो मैं बिरस। इस वास्ते साहबां दे गुण गाओ ने सारे ओ साहब ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना ते आए करी पढ़ी। जिस बापू की गोद च बैठी मालिक की रहमत प्राप्त कर रहे हो आओ मुझे भी पवित्र करो। आ रही गई।

に古木蘇白गुरमुख उजल हंस है मनमुख है काग मनमुख उदे कमल है गुरमुख सो जाग मनमुख जो

रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया, तां भाई साहब जी लिखदे ने राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली, राजा उठिया, महल दे अंदर राणी नू लभण लग गया, सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना आई, मन विच वरत गई है। तो प्यारी साध संगत, राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउण लगे, मंदे भी आउण लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है, पर अद्धी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना, ए तो मैनु धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई। दिन चढ़ेगा, जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया, राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दिती, राणी ए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल कीता राणी ते, ए राणी ए सच दस तू राती किथे गई से, अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी। राणी सोचन लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी, आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे, राती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी, महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी, रोज डेली नितनेम बनिया होया सी। चाहे मीं होवे चाहे हनेरी, कैसा भी वैदर क्यों ना होवे, राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी है तो हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक देवे, पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग, मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले, पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी है, ए प्यार है। राणी सोच, राजे ने फिर किया, राणी बोल तू राती किथे गई से, जे झूठ बोलदी आ तां पति परमेश्वर है, इस्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है, जे सच बोलदी आ तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है, जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती, सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

अनंत सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चियां वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत सावधा पाठ